मेरा सलाम फिल्म का गाना आपने सुना। आशा और तलत महमूद की आवाज में शिवान रिजवी ने इसे लिखा और संगीत दिया हाफिज खान ने। इन जज्बातों में सच में एक गहरा सा दर्द छुपा है, पर यह दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं होता, इसमें एक अजीब सी खूबसूरती भी होती है, जैसे कोई पुराना गीत जो थोड़ा रुलाता है मगर दिल के बहुत करीब लगने लगता है।

मोहिनी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, राजा मेहती अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर

वो कौन थी फिल्म से आप ये आपने गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

0: मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में 3रे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% LPG का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जी वत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को संस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायता उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकी के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और सामाजिक समावेशन को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के लिए रिकॉर्ड समय 3 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य को 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के KR राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में भी बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Election Commission has ordered for repolling in 15 polling stations.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

चरस फिल्म का गाना आपने सुना, लता और रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यादें सच में कितनी मीठी होती है ना, कभी हल्की सी मुस्कान बनकर होठों पर आ जाती हैं, तो कभी चुपके से आंखों को नम कर जाती हैं। वो बीते हुए पल, वो हंसी, वो बातें सब दिल के किसी कोने में ऐसे बस जाती हैं जैसे कोई मीठा सा गीत बार बार सुनाई दे।

लहू के दो रंग। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा फारूक कैसर ने और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिल अपने आप धड़कनों की ताल पर थिरकने लगता है। आंखें बंद होते ही जैसे कोई अलग ही दुनिया बस जाती है, जहां ना कोई फिक्र होती है ना कोई शोर, बस हम होते हैं और वो मीठा सा एहसास। हर सुर दिल को छूता है, हर लफ्ज कहानी बन जाता है और हम जाने कब उन यादों में खोकर धीरे धीरे झूमने लगते हैं, जैसे वक्त भी उस पल ठहर सा गया हो।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 12 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सनम तेरी कसम फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले और आरडी बर्मन की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पुराना गाना चाहे वो डिस्को ही क्यों ना हो, उसके लिरिक्स में एक गहराई होती है, एक सादगी होती है जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। धुन भले ही तेज हो, बीच पर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, लेकिन शब्दों में हमेशा कोई गहराई, कोई एहसास छुपा होता है। प्यार, जुदाई, उम्मीद या फिर जिंदगी की कोई सच्चाई। आज भी जब ऐसे गाने बजते हैं जैसा अभी हमने सुना, सिर्फ दिल नाचने को ही नहीं करता, हम हर लफ्ज को महसूस करते हैं और शायद इसी वजह से पुराने गाने हमेशा दिल के इतने करीब रहते हैं। तो अब डिस्को सॉन्ग के से सीधा अब हम आपको ले चलते हैं थोड़े से संजीदा गाने की ओर।

बाबरी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और यीशुदास की आवाज में। माया गोविंद ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वादा हो तो कुछ ऐसा हो जो लफ्जों से नहीं एहसासों से निभाया जाए, जो वक्त के साथ फीका नहीं और गहरा हो जाए। वादा हो तो कुछ ऐसा हो कि दूरियों में भी पास होने का यकीन दे और खामोशी में भी साथ होने का एहसास दे। वादा हो तो कुछ ऐसा हो जो हर हाल में मुस्कान बन जाए।

बदलते रिश्ते फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

जबरदस्त फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर

0: उगनेन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में तीसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है बल्कि सफलतापूर्वक 60% LPG का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जी वत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए ये मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों में को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के रिकॉर्ड समय 3 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य को 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने डेनमार्क में क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में भी बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Election Commission has ordered for repolling in 15 polling stations of West Bengal today. Repolling will be held at 11 polling stations of Magrahat Paschim Assembly Constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly Constituency in the state. More from our correspondent.
3: The Election Commission of India has ordered repolling in 11 booths in Mograhat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision

समय हो गया है 3:11 और 11 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की आवाज फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ जिसे अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

कागज और कलम आज भी कुछ कहने को बेताब है, जैसे हर शब्द में छुपा है कोई अधूरा सा ख्वाब, रात की खामोशी में लिखी

मोहब्बत भी क्या खूबसूरत इनायत है जिसमें हर दर्द भी जैसे कोई करम सा लगता है। तेरे साथ हो तो ये रात भी इबादत बन जाती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। प्यार के रंग से जब दिल रंग जाता है, हर मौसम फिर गुलाब सा महक जाता है। ये रंग ना फीका पड़ता ना घुलता, बस हर धड़कन में चुपके से मिल जाता है।

तुम्हें अपना बनाने की जो कसम ली है वो हर धड़कन में अब बसती चली गई है। ये रात गवाह है उस वादे की जो दिल ने चुपचाप किया था तुमसे।

जब रात गहरी होती है तेरी याद और भी करीब आ जाती है। खामोशी से तेरी आवाज जैसे गूंज सी जाती है। हर सितारा पूछता है क्यों आती है तुझे मेरी इतनी याद।

और इस समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द हाजिर होंगे 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में तीसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% LPG का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में

0: व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित क्षेत्रों से निरंतर और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जी वत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकी के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी की संरक्षण और सामाजिक समावेशन को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के रिकॉर्ड समय 9 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया। भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। डेनमार्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूं और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म श्रीमान सत्यवादी से मुकेश की आवाज़ में और इस गीत के संगीतकार दत्ताराम।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म पूनम से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म आप तो ऐसे ना थे, मोहम्मद रफी की आवाज में संगीतकार उषा खन्ना, गीत का निदा फाजली।

अभी आपने गीत सुना फिल्म अगर तुम ना होते। लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार गुलशन बाफरा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। सुनते हैं अगला गीत फिल्म हाथ की सफाई से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म साजन का घर से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति, छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसलों में दखल नहीं दे सकता। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मूर्ति जय माल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में 3रे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% एलपीजी का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIAS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा है कि ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है। साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के लिए रिकॉर्ड समय 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। अगला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

भोरगिये सुहानी बेला, प्रभु का सुंदर उपहार है, नई उम्मीदों की किरणों में छुपा हुआ हर एक सपना साकार है।

जीवन की राहों में कभी रुकना नहीं, थकना नहीं। ईश्वर ने जो शक्ति दी है मेहनत और विश्वास की, उसे अपनी हिम्मत बनाकर हमेशा आगे बढ़ना।